आप कराए सखती फिर आप कराए वार। एक नागली जजीरिया एक तुरी चढ़े पिसार आप कराए करे।

जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा जी गुरु करी प्रभा ज

जे अंदर जियो सब कुछ जान ला सब तेरे बस तेरा कर पला तेरे करण बधाए तुद कर माण महता तेज अपना पुजर सर्व कला भरपूर दिसै।

दिल्ली में आशीषगंज रकाब गंडवाला साहेब मंगला साहेब सतो चंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मिले बलारे।

प्रबल चंड का सक उभारा खोखट अपहरा नद गाए अष्टमाल का सक संग लाए पुन आयो हिंडोला पंचनार संग अष्ट सुत।

ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भज केते अच वच हो सपज उड़ जाएंगे। केत नव बीज अच पछ को करेंगे भज केत कब्रत अच हो पचाए खाए जाएंगे।

मंडंग प्रचंड पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भरमंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भरमंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स रूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे।

देह दुखं कहूं औखदि रोग के सुख सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच गंधर्व के नर कहानी कहूं राजसी साध की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राजतन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं भूम वाणी कहूं गोग की काव कथा।

सभाग्या कहूँ देव बाने कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ अंतर विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतन कहूँ शस्त्र सारंग होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ भीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतन कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतम प्रभा हो कहूँ झैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजन।

जय जात न पात न मात पितंग जय रचियं छत्रि छत्र चितंग जय राग न रेग न रोग भणं जय द्वैग न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नकं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रजांड सेतज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन ज्योत जुतंग जे तातन मातन अपराध सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुअंग जे जम पै किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांद गणंग बहुत भवेख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास की।

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है अचिंच तेज मान्य, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग ताग तक है, अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेक से गेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्व वर्ण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है, अद्वेक है अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो पुराण नेत्र।

नाव है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेग है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न

काल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ

रूप राग नरेक रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध बुरक सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद बुरक अपार हस कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात न ताद जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र।

सनक औसन के सनंदन पावे ही न सेव जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही सेव सकराव मुख चार सरब सबद पतार के दर्जा पही जह जाप आद देव अगाद तेज अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज रज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानु न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णव के बिखे विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा घोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस फन रह नेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त थके महाकव गढ़त गाढ़ अनंत हार हार कहे सबो मिलना।

दुष्ट हर नंगुष्ट करण सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हाता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व

कहाँ रंग राजा कवन हरक सोख है कवन को रोगी रागी कवन कहो दत्त मह तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

डाबरू डवंके बरब वंके मुजाफर अंके तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अतिथ चमके फुंक फनंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून कित दामनी दमंकन तुजा फलंकन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकर खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा का सल उर्दा थे दामनी प्रहासन।

सी मैं का दुर्मर्दन पाप विनाशन धर्म करे। अघ ओघ निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सस्त

पूर्वी ने पार पावा है गुलाम हमारे पूर्वी ने को अगर दे दी गुलाम का बल दे रहा है हम पर जो दे दियो गुलाम का बल दे रहा है ना ने दे दियो दे यार दो के यार दे दियो दे दो के दे यार दो के यार दे दियो पर के फिर की माने धारी को सर के बचन के बचन के बचन ने जो नाम है के प्रटा में कर दे दे का सुन के प्रसार कर दे दे बल के लिए मैं उतन दे रहा हूं दे दे बल के आए जाने का नाम है बंग के बंगाले के रंग के बंगावाल बंगाली के रंगवाल के ये रंग ना चले दिल के रंगवाल के रंग में ले मात दे दे के रंग के ले पेर बंग से बुद दे दे पाप के जो को मतलब करता है ये पाप को जो मतलब करता है जिन मजीन के से वो भाग बंद कर दे दे आए तो के दे के अंदर दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे दे पूर्ण अवतार निराधार है ना पावर पर पाई है ना पावर पर पर पर मिले ना पर पर पर पर पूर्ण निराधार से मत पर रूप पर रूप है ना प्रति के के मार मुंह है ना पास है ना जात रख मन जात जात के पाप हो ना जात रख मन जात जात के पाप हो छोटा माया जान के मान लेने पर देख रूप पर रख के राज दिए हो जाते जो जो मन में को मन का है निज जगह है जान दिए है भगवान पर है निज जगह के जान दिए है तेज हम बता रहे हैं राज से गुजार हैं हम सुधा को कह रहे हैं जिस सदा ने सार सदा को बना के कान में लगे सारा के सगा में मेरे कथा ने बान है के बुद्ध को उतार है के बान है के बुद्ध सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूपन सर रूप को रूप है को मत को बने काल में को रूप में को दाता को नहीं मार को दार है साधना को रचनी में गुण होगा वो पास है मूर्त है को सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विपुल है को रूप को बुद्ध है को छोरा में बुद्ध है को बुद्ध को करेंदा है के को विपुल है हंदा है को निमन काल के काल है के सत्र के साल है के काल में वो बोलते के जदा के वास में है जो को को जन रहते के जो को जन रहते के वो मन को मंत्र है के पूर्ण प्रकार से है के मंत्र है के पूर्ण रूप को निवास है के बुद्ध को काल को को के दादा को काल के बोध को को घर है दादा को देव को देव है के जन है देव को देव है के देव है के सुत को देव है के देव है के सुत को सार है जान को बचैया है मान को बचैया को जान को बचैया है को काम या को जा रहा है को तेज को कर जन का है को कर को कर दे को जीवन को मन है के जो है ना मन बन को मन है के जो है ना है विश्व को वर्ण है के पदा का हरण है को को को के पद दे जो को प्रकाश को है को आई है के पार को बड़ा बार है पार ये को की जा रो विचार रो विचार को नहीं बात है विचार को विचार हे गुला है मान लेता है हब से हल बिंदर पूरा बिना बाहर पाप है सत देव न पूरा बिना पाप न को देव मत दे मत दे दे मन को दे न मन के बिना कर दे बिना से है अपने मन कर दे बिना से है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है गज विग्रह है निरंजन तैयारी है मंडाल के देवन है देव भजन देव बन के देव नाथ के देव तैयार है मोहर जमान बाल के देव तैयार है राजा के राजा के राज मन के साथ राज जो के रहत जो कह धनी का समझ डाल के एक को न को कर है एक बुद्ध काल के रहे गुण के द्वार के साथ एक काल हट चाल के एक पति एक काल हट के चीर के चीरा वद छाज के छता ने छाज के करा वद छाज के काल इंद्र के बोल के नरक के सीधा राम के रसूल से ने बाद से
बटकसी का लाज कमा बटकसी बटकसी सरसा सुनंगा बटकसी के लोग बोले चाहे रहे प्रजा के मले हाल गाना के पहला बने रहे ने कर दे हाजी पूरे दे कर मोहलियत है आज पूरे चले दिन से जब बाबा जी का मासे चंद्र के जान जी सब जान जब जो जान ये रे कहा ने से कर दे बड़े दो जब की से बुलंद आवाज की रत दम पर की रोज दिया दे सवाल करते हैं लिखा दे की रोज दिया दे तो किया है पर अति फिरंगी पर अति के दुरंग बना कर मन के पर अति दे के दुरंग लाई जाते हैं क्या वर्त दिल के लागी बोल कर ये दिल करना जब जाए तो मन के दो राती के दुरंग काम जाए ये तो है तेरो नाम जाए पूरे भला हो काम रूप हो काम हो सब डर हो पर रूप हो काम हो जाए ये पर है पर ने बता भी जाए मन करते जाता बिना डपटे रवि जाए बोलते तला

ना को होए जीवड़े आप ते वड़ तेरी दात जंदन कर कह की ती रात कसम वसा रहती कम जात नानक नावे बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सदगुर सदपुरखा बिनौ करो गुर पास हम कीरे कर्म सतगुर शरण।

रह रास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै त्रिपता सहमल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवै ध्रग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन

हर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सातिस पाछे बचरे छरिया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करिया।

अनक अनेक अनंता तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तप है जप है बेनता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अद्भुत भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल।

चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्न स प्रथम नाऊ किशन बिशन कबहू नह ध्याऊ कान सुने पहचान नतन सो लवलागी मोरी पग इंसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय।

आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो, मुए हार परा मैं आन द्वार तुहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किं कर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरिन संघारो।

सुर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जी जी तुमरे ध्यान को नित उठ ध्यान है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दे जह तह।

तन बुद्ध सोदीपक ज्यों जियारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लय कातर ताकतवार बुहारे दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई वाकत ने। स्वर्ग वास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चौपाई। जो

सवैया पाए कहे जब ते तुम रे तब ते को आख तरे नहीं आनेओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्रीयस पान कृपा तुम री कर मना कहो सब तो

0: बाएं कहें कि लाज यस गोविंदा स्वार दोहरा राज करेगा खालसा
1: वार सब लेंगे बचे शरण जो हुए दोहरा उठ गए सभा मलेच के कर पूरा पासार डंका बाजे फजार चातर चक्रवर्ती चातर चक्र भुगते स्वयं पाव शुभंग सर्वदा।